0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunna bimarano dapara, the umid ze batal branch or staso pakhar sababai ki pranista shuvida. Katasuki humsu khpali bimare, the classic homeopathic ilasara, the munda khatmol.

रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।

तो डोंट गो एनीवे लिसनर्स, खबर मतलब मकसद था और चिलग ख्याल का हुई और ख्याल सर्च कम देनो ड्राइविंग का हुई कोशिश का हुई छे ड्राइविंग पर दौरान किच कम देनो या खुदा पाका दा माइक जमा खराब शो का हेडफोन जमा खराब शो या खुदा पाका दी माइक किच कम देनो समस्या रहा लेजे या खुदा पाका वार कही लग माम Hello. Okay, Shuji. Hello, mic check. Mic testing. Test.

Amrish Ilahi from Saudi. Singer doctor ye tik tak ki doctor sus ilaaj ke kuch kam na dard ilaaj ke ho kana to dard ilaaj ke nu bas yo patient kam na ta advance ke milau shu ochar to kam na nor dard kharab na ke lala bas toraj kam na khan di tori ma khan da khun dikhkar hai आवाज कट कट के आ रही है जी आवाज पहले जो है ना कट कट के आकिब जान दास सिंह चल दिया नेट को दिल तक कमदन मास्टर 10 एमबी बराबर दे और स्पीड को है नो स्पीड वेल कमदन उस सेंड कम आ वार के चीज आकिब जान तक कमदन नो अपल द नेट स्पीड कमदन सेंड को मो जी दास सिंह चल दिया यार ये जालिमान हो दास कमदन अपन मोबाइल नु कनेक्ट कर दी खाना मोबाइल नु पर कमदन द پدی وجہ چکم دنو آواز زین وقت کے کٹکی گرا کٹکی گی

आपके शो डेली बेस से सुनती हूँ सर, आपको पता है मैं आपके शो के लिए अपनी क्लासेस मिस करती हूँ, बट आपके शो को मैं नहीं छोड़ सकती। इट्स मी फ्यूचर डॉक्टर अमरीश ये रस्ता फदीनुम किच गमदन सो गलत है गम डॉक्टर साहिब दस कर दे गना चिदा नुम गमदन पता सुचा ये खो देवा आवता न गमदन मा क्वेश्चन कड़े सवाल कड़े हां जसिंगा लगज गमदन नो स के ता सब स्पेशल कॉलेज शे ओ स के लगज गमदन नो ता सो स्टडी गो यो को दजड़ो इलाज गमदन तस मौजूद दी नो बेहोश गमदन नो बल सेटा बल तरफ ते लगज गमदन नजम आओ कता सर मौजूद दी नो तस न बच गमदन इलाज बहु कुछ ट्रांसिशन वगैरह सर रियायत वगैरह असल कुछ गमदन नो पीसी बा फ्री दे यो खाना कसो ट्रांसिशन वगैरह को नो ब्याज गमदन तस न इलाज ना ना ना ना दा सूचो न मको इच ताहिर गमदन लग फ्री कुछ गमदन तस न इलाज वाड़ी नो नो नो नो नो नो नो नो जमा दा आदत न दे दी के जज गमदन लगा अपल प्रोफेशन इस्तेमाल कम अपल प्रोफेशन दवज गमदन चाना फ्री के सर्विसेज वाले मा द हर जज गमदन अपल पूरे यो मिश्री का कलाकार इज दके कनन आगा जासर लकज गमदन कार तकीनी कार इज दके यो ब्याज गमदन मार्केट तराजी ब्याज अंत दुकान कुलावे ब्याज अंत गमदन की सकतरा बराबर है यो नो दी गिज गमदन दागी मेहनत शामिल है वक्त शामिल है वक्त वर्गड़ी है नो जज गमदन दखल को वक्त कदर कौम हो दबता सुखल के इश्क द चार्ज गमदन तो कदर न को है माया बुनेरवाल जी गमदन प्रोग्राम के शामिल हुआ वही छे सलाम भाई वालेकुम सलाम आयजनूर सिंह दा खदे जी सोचे दखी कवि कहना नो दवाज गमदन बाबी ना हो रही बाबी गमदन नन सर तड़ल दे और मशीन लगो ले नॉलेज गमदन लगज गमदन आवाज ना हो रही मसरूफ दा नन जिसो आई नो आई जी नन नीला मौका दा सास्त सलाम आओ ठुलू और दून को सलाम अमाया बुनेर वाला मना ना शुक्रिया मत दस लगी बुनेर के जोर दखा ये दा सिर्फ दगा प्रोग्राम और नूर्ज गमदन खैर खरीद दे खैर दे द मरदान और दून के जमुंग सुमरम दी दीन अलावा गमदन जमुंग द हरिपुर एबटाबाद मानसरे गाजी गुरगोश्तो अटक चार चार फेरा सुमरम और दून की दिन दागी हम गमदन अकबल मौजूद गए माला एहसास रहा की आगे हम मा तो हुआ चीज माँ आवाज गमदन दागी गुना तर रसी

ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे फेवरेट पर्सन जो है ना आउट ऑफ कंट्री में है, चाइना में है। सर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं आप, और प्लीज कभी रेडियो छोड़ के ना जाइएगा। फ्यूचर डॉक्टर जिकंदन इमरिश मुंसर प्रोग्राम शामिल हुआ, मौलाना शुक्रिया डॉक्टर। वैस्ता दा जड़ो इलाज निश्ते बस सबरी इलाज दे सबर उका सबर सरज कमदन लखज कमदन सा इलाज बखीगे ना गना पर सबर सबर खुच कमदन दाजमा सर गिशिन छो ओफ ताहिर पमा यकीन ना के खो ये औरत बा राशि छे यकीन बा दी दर्शी ना यकीन बदे राशि खा ताहिर या खुदा पाका बचा चा यकीन के।

ओके जनाब, ट्रैक प्रोग्राम के शामिल हो सनमा दर ट्रैक बैकग्राउंड की वह चली गई उर्दू ट्रैक दे आई होप भी बता सो उस्तास बड़े रिजात खुशी कसो हम प्रोग्राम के शामिल दल ग्वाड़ी रातल ग्वाड़ी कुर्बान दासो प्रोग्राम के शामिल दे छे दस बंदा राजे छे बस पैदा रा खुशी या बेजगंदन दासी छे प मोटर बम नाराजी पैदा बम नाराजी प बाइक बम नाराजी जका छे प मोटर ओ बाइक मान गमदन ओ खर्च की गी तेल लगी औजदाना ग्वाड़म छे सास गमदन तावानु छे नूर सोख खपकी ओ कना ज लगे गमदन उस्ताद पदी तावान मान गमदन सम बल्ला सम डेट गमदन खपकी गमाम।

तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं इस हवाले से ही एक बात कर रहा था कि ख्वाहिशात खत्म इसलिए नहीं होती क्योंकि दिल मुकम्मल नहीं बढ़ता। ये हमेशा कुछ ना कुछ जो है ना चाहता है, कभी किसी की आवाज, कभी किसी की मौजूदगी, कभी किसी का हाथ, कभी किसी का वक्त, कभी किसी का साथ और मोहब्बत में तो ख्वाहिशात और भी गहरी हो जाती है ना। पहले ख्वाहिश होती है कि वो इंसान मिल जाए जिससे मतलब इंसान को मतलब एक तरीके से चाहत होती है। फिर ये ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा साथ रहे। फिर ये ख्वाहिश होती है कि वो हमें कभी ना भूले। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान सिर्फ जाना ये चाहता है कि वो एक बार पलट कर देख ले। जनाब यहाँ ये बात मैं करना चाहूंगा कि इंसान ख्वाहिशों का मतलब बना हुआ है। अगर ख्वाहिशें खत्म हो जाए ना तो शायद इंसान जीना छोड़ दे, क्योंकि ख्वाहिश ही तो इंसान को हर सुबह उठने पर मजबूर करती है, या मतलब जो है ना उठने की एक वजह बनती है। और किसी शायर ने मतलब जो है ना क्या खूब कहा है, ख्वाहिशें समंदर की लहरों जैसी होती हैं, एक खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। जनाब अब मैं यहां इस सवाल से एक बात करना चाहूंगा कि अब अगर आखिरी ख्वाहिश की बात की जाए ना तो इंसान की आखिरी ख्वाहिश अक्सर बहुत छोटी होती है। पूरी जिंदगी बड़े ख्वाब देखने वाला इंसान आखिर में सिर्फ सुकून मांगता है, सिर्फ अपने लोग मांगता है, या मतलब जो है ना ये कि सिर्फ मोहब्बत मांगता है, चाहत मांगता है, एहसास मांगता है। कोई चाहता है कि आखिरी वक्त में मां का हाथ सर पर हो। मतलब जब इंसान का आखिरी टाइम आता है ना, आखिरी वक्त में मां का हाथ सर पर हो। कोई चाहता है कि जिससे मोहब्बत की हो, या मतलब जिससे मोहब्बत हो वो सामने बैठा हो। कोई चाहता है कि उसे माफ कर दिया जाए, और कोई सिर्फ ये चाहता है कि उसे याद रखा जाए। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आखिरी ख्वाहिश क्या होगी तो शायद जो है ना यही कि जिन लोगों के दिलों तक मेरी आवाज पहुंचती है वो मुझे अच्छे लफ्जों में याद रखें। बात मेरी समझ आ रही है या नहीं, या शायद कि किसी बारिश वाली रात में कोई खामोशी से मेरी बातें याद करे। और जनाब इंसान की आखिरी ख्वाहिश कोई भी नहीं होती। और जनाब इंसान आखिर में दौलत नहीं मांगता, बंगले नहीं मांगता, गाड़ियां नहीं मांगता, वो सिर्फ जो है ना एहसास मांगता है। बात मेरी समझ आ रही है या नहीं, कि शायर ने क्या खूब कहा है कि आखिरी ख्वाहिश में इंसान अक्सर मोहब्बत मांगता है क्योंकि पूरी जिंदगी उसे यही कम महसूस होती है। मैं लिसनर्स आप लोगों से आपकी आखिरी ख्वाहिश के हवाले से पूछ रहा हूं कि आप अपनी आखिरी ख्वाहिश क्या बताएंगे, और ख्वाहिश क्या लगाया थी और होते हैं मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगा। आई होप कि आप इस ट्रैक को एंजॉय करेंगे और साथ साथ रहेंगे, और मुझे अपने साथ का अपने होने का एहसास जल्दी जल्दी से दिलवाएं कि आप मेरे साथ साथ हैं। ताहिर जमान की आवाज सुन रहे हैं, ताहिर जमान की आवाज आपकी समातों तक टकरा रही है, पहुंच रही है।

अच्छा तो मैं क्या बात कर रहा था, फिर वही इंसान जिसके साथ कभी हंसी मजाक किया जाता था, वही इंसान दिल की खामोश दुआओं में शामिल हो जाते हैं, और जब वो दूर होने लगे ना तब पता चलता है कि ये सिर्फ जो है ना दिल लगी नहीं थी, ये तो रूह का ताल्लुक बन चुका था। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, मगर अब हाल ये है कि हर चीज उस पे, हर गाने में वही याद आता है, हर बारिश में उसी की खुशबू महसूस होती है, हर खामोशी में उसकी आवाज सुनाई देती है। जिनाब मोहब्बत का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर उतरती है, और जब तक इंसान समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, मतलब जो है ना तब तक इंसान अपने आप से भी बहुत ज्यादा दूर चल जाता है। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा,

हम तरसते हैं रोशनी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। जनाब मोहब्बत का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर उतरती है और जब तक इंसान समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर इंसान खुद से पूछता है आखिर एक इंसान आदत मतलब इतनी क्यों बन गया या एक इंसान की आदत इतनी क्यों पड़ गई है, क्यों हर बात उसके बगैर जो है ना अधूरी महसूस होती है, अधूरी लगती है, क्यों दिल किसी और में नहीं लगता, क्योंकि दिल ने उसे वक्ती नहीं समझा होता जी, दिल ने तो उसे अपनी दुनिया मान लिया होता है। और एक अजीब बात यहाँ पे लिसनर्स मैं कहना चाहूंगा कि मोहब्बत अगर मिल जाए तब भी जो है ना इंसान बदल जाता है और अगर बिछड़ जाए तब भी इंसान बदल जाता है, चेंज हो जाता है। फिर दिल मतलब जो है ना पहले जैसा नहीं रहता, दिल में मतलब जो है ना वो एहसास वो फीलिंग्स पहले जैसी नहीं रहती, वो हंसता भी है तो अंदर कहीं जो है ना दर्द बाकी रहता है, वो लोगों में बैठा भी होता है मगर जो है ना सोच किसी एक ही इंसान में अटकी रहती है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए मगर अब हकीकत ये है कि मोहब्बत रातों की बेचैनी बन गई है जी, कभी आंखों की नमी, कभी खामोशी और कभी एक लम्हा मतलब जो है ना इंतजार के लम्हे भी बड़े अजियतनाक मतलब जो है ना दर्दनाक होते हैं, किसी के इंतजार करना उफ उफ खुदाया। जनाब बाज लोग जिंदगी में सिर्फ के लिए आते हैं, मतलब चंद सेकंड्स के लिए आते हैं या चंद घड़ियों के लिए आते हैं मगर दिल पर पूरी जान छोड़ जाते हैं। फिर इंसान लाख खुद को मजबूत जाहिर करे, लाख खुद को मतलब जो है ना बनाने की कोशिश करे मगर सच यही होता है कि कुछ नाम

माइक भी जहन चेक करना पड़ता है, माइक को भी थोड़ा देखना पड़ता है कि हमसे ना जाते हैं फोन जो है ना हमसे। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी। जनाब कभी कभी इंसान सिर्फ हंसते हुए किसी की तरफ वक्त गुजारने के लिए, सिर्फ दिल बहलाने के लिए, मगर दिल को कहाँ खबर होती है कि यही चंद पूरी जिंदगी की बेचैनी बन जाएंगे। पहले सिर्फ जहन लगती है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आप लोगों को पहले कह चुका हूँ, फिर लगती है। फिर हाल ये होता है कि सुबह आंख खुले तो पहला ख्याल जो है ना उसी का आता है, और रात डले तो आखिरी आती है। वो जब सामने आए तो दिल अजीब तय है, वो जरा सा जो है ना मुस्कुरा दे तो पूरा दिन हसीन लगने लगता है, और अगर खामोश हो जाए तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरती है हवा की तरह, खामोशी की तरह, और फिर एक दिन इंसान महसूस, अब वो खुद में नहीं रहा, वो किसी में मतलब जो है ना बस चुका है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, मगर अब हाल ही है कि ही याद आता है, हर बारिश में उसी की खुशबू महसूस होती है, हर रात उसकी बातें, जागने पर मजबूर कर हाथ में लेकर सिर्फ उसके मैसेजेस का इंतजार करना पड़ता है। कभी उस खामोशी से मतलब जो है ना मुस्कुराना ये भी आदत बन जाता है, कभी सीन होने के बाद आने का ये उदास मतलब ये उदासी भी दिल महसूस कर। ये सबसे बड़ी मतलब जो है ना एक अजियतनाक बात होती है जी, कि बंदा जो है ना मैसेज आपका देख लाए ना करे। ये सब दिल लगी नहीं होती जनाब, ये और मोहब्बत इंसान को अंदर से नर्म कर देती है, इंसान को बहुत ज्यादा नर्म कर देती है ना। वो जब करीब बैठता है तो दुनिया भूल जाती है, उसी की आंखें, उसी की आवाज, उसी की सांसें महसूस होती हैं, और जब वो दूर जाए ना तो लगती है चाय का जायका, बारिश की उदासी, और इसी के साथ साथ रात लंबी, और मौसीकी भी दर्द लगने लगती है, दर्द मतलब जो है ना अजियत देने लगती है। जनाब बाद लोग इंसान की जिंदगी में इतनी खामोशी से आते हैं, या मतलब जो है ना इतना साइलेंटली आते हैं, इतने खामोश अंदाज में पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ, मगर फिर वो दिन में मतलब जो है ना ये कि अपना वो क्या कहते होते हैं, अपने एक एहसास फैला लेते हैं, या वो लोग जो है ना दिल के हर बस, और ये कि रच बस जाते हैं। फिर इंसान खुद से कहता है कि ये सिर्फ दिल लगी थी, मगर दिल जानता होता है कि ये तो रूह बन चुका है। और रूह का ताल्लुक किस तरह का ताल्लुक होता है जी, रूह के ताल्लुक के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौजू है जी, इस पे भी काफी सारी बातें हो सकती हैं। सो रूह के ताल्लुक के हवाले से कुछ थोड़ी सी बातें हम करते हैं, एंड ये है कि साथ में ये प्रोग्राम का हिस्सा बना देते हैं, क्या ख्याल है? आई होप कि ये चलेगा, आप इसे एंजॉय करेंगे। तरगे गजल

अच्छा जी, बीच में मैसेजेस भी आ रहे हैं साथ साथ, और ये कह रहे हैं प्लीज तेरे में तेरी मेरी प्रेम कहानी ये वाला ट्रैक शामिल कर दें। कोशिश करते हैं जी आपके लिए आज ये हम ट्रैक शामिल कर दें पूरा एक बार, क्योंकि अगर मैंने आपका ट्रैक शामिल कर दिया ना तो ये होगा कि फिर मुझे बाकी लिसनर्स के भी गाने शामिल करने पड़ेंगे। सो इस पे आप थोड़ा सा जो है ना अपने दिल को करार दे दें, अपने दिल को मतलब जो है ना चैन दे दें अपने दिल को करार दे दें, अपने दिल को चैन दे दें, और थोड़ा सा जो है ना ये कि आप गुजारा कर लें, ठीक है ना। पश्तो के टप्पे भी साथ साथ एंटरटेन करते हैं जी, शामिल करते हैं। और पश्तो टप्पे कौन से वाले टप्पे होने चाहिए? आए मैं चाहता हूं ना कि इस तरह के टप्पे आपके लिए शामिल करूं कि जो कि आपको अच्छे लगे, एंजॉय करें। यस, ये वाले टप्पे एंजॉय करते हैं जी, आई होप ये वाले अच्छे रहेंगे एंड इनको आप एंजॉय करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। एहसास दिलवाएं जी, अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे दिलवाएंगे? 0334-440-0976, 0334-440-0976, 0334-44-00976। अगेन यो जल्बियत और सफर आने को 0334-440-0976 0334-44-00976। आई होप द नंबर बताओ सुजान सर लिख ली भाई, नोट करी भाई। अगेन यो जल्बियत और सफर आने को 0334-440-0976 0334-44-00976।

जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो चाहे वो मिल जाए, कुछ अधूरी ख्वाहिशें तो जीने का मजा देती हैं। ताहिर भैया वेलकम टू द शो। बुशरा एम मना ना, शुक्रिया बुशरा। आप भैया कह देते हो लेकिन जो है ना आप मेरा ट्रैक शामिल नहीं करते। शो ए वन दे तो रजकमदन यूजलबिया मैसेज की मनाना शुक्रिया। तो रे प्लीज एज ए नूर जान रजकमदन स्टूडियो तारा वाला। इरहा मैसेज के जी इरहा मनाना शुक्रिया। इरहा इरहा नबाद नेक्स्ट दचा मैसेज रागले दे। सलाम भैया सिंह खी तासो ठीक ठाक ये फर्स्ट टाइम चकमदन मैसेज को जमा द अरमान दे चेज बाबी हुई नमा नो कस्ता कूर के चकमदन बाबी नो गो रख बाबी खुश मन कहना लक्ष्मन से मन कहना चिमामा गोरा नौफल बाबी गोरा आपको जरूर वादे नहीं शिवे नो वादे चल ओशी न्याज कमदन नौ खडेर बाबी गोरे बाबी गोरा हा बच्चे सुख मन कही देना बाबी गोरा कोर गिरा गोरा गो

पहले अपने दिल का इलाज करती। डॉक्टर मैसेज कीजिए और डॉक्टर वो चे मेरे पास अगर दिल का इलाज होता डॉक्टर तो उस खबर गमदन आप देखो के गलत खबर दाची बच गमदन उस खबर आप देखो के तो पदीज गमदन यरे गई ताहिर बच गमदन वालों पैसे ना ना ना ना ना ना ना दस मकवा डॉक्टर खैर पीसे वाले दर कौमो दा इलाज गमदन दा जरूरी इलाज दे आओ कदा इलाज उन शो नो बस जमा प्रोग्राम न बच गमदन नो लका आशिक मिजाज होते गमदन प्रोग्राम न बतासो और शायरी मायरी बा और ना कदजड़ इलाज गमदन नो बराबर सुखना कदजड़ इलाज पूरे शो नो बियाज गमदन दा शायरी मायरी विदा खत्म है नो तासो या और इदुन को दी जड़ इलाज गमदन दा पकार देओ कने यो दट ट्रैक शामिल खबर लग दमा और कौम जी कमियो ट्रैक शामिल को ब्या इजाजत बम वाणमो दा मैसेज द चार अगले दे आयजा में समा डेरा याद शवे द प्लीज ऑन एयर का जरद वी नो अला जोरा दर तचकम न नवाम ओय ओय ओय या खुदा पाका दस वजे दिल टपी एंजॉय कीजिए दिन बाद वापस रिता सुरखा हुआ।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: ख्वाबों को हकीकत में बदलिए, आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ। नए साल में एक नया आगाज।
3: द एलोपैथिक और द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजों ना ना उम्मीद शुरू बीमारों द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

0: station that really does play today's best music with 30-minute all-hit power plays.
1: Here we go.
0: Yeah. Guaranteed.
2: मर्द को इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वक्त आने पर वो अपनी हेल्प भी कर सके और दूसरी की भी।

से निकाह कर रहा हूं मैं, यही तुम्हारी सजा है और मरते दम तक तुम्हें यह सजा भुगतनी होगी।

0: will be back right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
2: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी, खो कुचरता द दग जवानको पो वक्त बानी गम उनकलेशी, नो पो रारवान वक्त की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी। द ऑयल स्किन और द दानो द पारा यो डियर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम। तुम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए। डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश तुम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा। तुम चिप सलूर रोज की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल पो मुकम्मल तो गबाने खत्मई, और ये वाज दाना द दग दानो चकम दागो नदी अगर हम पो मुकम्मल तो गबाने खत्मेगी। पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, टी ट्री ऑयल और क्लिंडामाइसिन। कुमची यो देर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी, और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हम दी। कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो के दनना दनना स्तासु दानी और द दानो दागुना पर मुकमल तो गबानी खत्मई। नो जर तर जरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई। द मजीद मालूमातो द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।